अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गाँव हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्नि शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जा तेरे मन की प्यास, पूरन होवे।

सब सब धरती हलचल पाई साडे घरवार इं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसार तह बिन सतगुर को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़

शायर ने बड़ी सुंदर बात आखी है। ओ आंदने सरे जलसा गोविंद ने तकरीर फरमाई, ये वो एक तकरीर थी जिसमें इनकलाबों की थी अंगड़ाई। गुरुजी ने कहा है दे गुलामी रह नहीं सकता, मुजालम के थपेड़े ये वतन अब सह नहीं सकता। यहाँ है जात के झगड़े, यहाँ मजहब के झगड़े हैं, ये सब मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत के लिए उन सरफरोशों की जरूरत है कि जिनके खून की एक बूंद

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर सहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तिया। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चीम्बा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया।

प्रेम दी सिखी आखो सतनाम। ये पांच तरह की सिखी जे धंधे की सिखी इनू आखदे ने कीर्तन की अखंड पाठ की माया लैणी। ये भी परवान है गुरु घर विच सिखी देखा देखी सिखी किसे नू वेख के जीवन बदलना ये भी परवान है। सूझवान सिखी ये भी परवान है देखा देखी सिखी ये भी परवान है सिदक दी सिखी ये भी परवान है। ते कलगीधर जी ने आखिया सी ये पंजे सिखियां प्रेम दी सिखी सिदक दी सूझवान देखा देखी धंधे दी ये पंजे परवान ने मेरे दाते आखो सतनाम। ते नाल एक गल आखी सी पाईए पंजे तां परवान ने एक शर्त है इन्हां पंजां सिखियां दे विच प्रेम शामिल होवे। इत्थे महाराज ने धंधे की सिखी का जिक्र किया है जे कोई सिख पुजारी है भाई उन्हूं धंधे की सिखी प्राप्त होई है तो किहो जी धंधे की सिखी करे जी।

कहिंदे कोई दिन संगरांद है कोई होर है गुरपुरब है तिन में कछ प्रसाद बनावे कर कड़ा खालसे खुआवे आखो सतनाम अगों बड़ी प्यारी गल कही दी वो कह के मैं समाप्ति करना तुसी भी कई बारी घर च संगत आवे जां खंड पाठ होवे प्रसाद बनाउंदे हो ते महाराज ने दस्या प्रसाद भी किवें बनाउणा है

तीन चीजा एको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा एको जिया इनू त्रिपावल की दे कहते हैं।

हर मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली

सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

दिवस है अभियान शब्द जदू मैं आप सुनी ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर पटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे आंदे नाल वसदा है ओदी निगाह तो कोई दूर नहीं हो सकता।

दिखा दिहाया क्यों लहे जा सर पीतर बा। कुछ सरोवर आपा बार धरती दे देखते हैं, पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं, जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है, क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने, फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है, वो त्याया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी, ओदे नाम रूपी अमृत।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ए नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं जिहदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखने है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जब लग हुकुम न बूझता तब ही लव दुखिया। सो सात संगत दी दैवी प्यों जदों चढ़ेगी मन नू, साड़ी निर्णय शक्ति दा विकास होवेगा, अनुभवी प्रकाश होवेगा, जिस नाल अपने पाने ते रब्बी हुकुम दी सोझी होवेगी। पर सात संगत विच आ के किहड़े करतब नाल मन नू दैवी प्यों चढ़दी है, वह है अंतरमुखी सिमरन करन नाल। सो मन नू आत्मक प्यों चाड़न लई नाम अभ्यास कमाई अंतरमुखी सिमरन दी लोड़ है। दूसरा, बख्शिया होया गुरमुख प्यारियां दी संगत ते सेवा अथवा सात संगत दी। अते तीसरा, गुर प्रसाद दी लोड़ है। होर सियाणपां उक्तियां जुगतियां दिमागी ज्ञान खुशक सुक्की फिलासफी कर्मकांड हठ धर्म अते त्याग दे फोके साधन ए कारगर नहीं होंदे, क्योंकि इन्हां सबना दे पिछे होमे दी लेश होंदी है। इको ही तरीका, सात संगत विच आ के आत्मक प्यौन चाड़ो। पर आत्मा विच तां बेअंत गुण हन, किहड़ी प्यौन सब तों कारगर है? सब तों उच्ची सुची ते अत्यंत कारगर प्यौंद इलाही प्यार है। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, क्या जप क्या तप संजमो, क्या वर्त क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए भाव भगत भगवान। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो। सो जदों सात संगत विच विचरदिआं असीं अंतरमुखी हो के सिमरन करदिआं, तां सात संगत ते अते सिमरन नाल साडा मन निर्मल होंदा जांदा है। हां जी, जदों पूरी तरह निर्मल हो जांदा है फिर साडी आत्मा दा अक्स साडे मन उते पैंदा है, तां साडे अंदर मैं मेरी दे प्यार दी बजाए तू तेरी दा प्यार वधदा जांदा है, आत्मा विचों सफुटत होंदा है। हां जी, आम तौर ते की होंदा है, असी सात संगत विच आ के मन नू थोड़ा बहुत निर्मल करदे आं, बाहर जाके फिर मैला कर देंदे आं, फिर थोड़ा निर्मल फिर मैला कर देंदे आं। सो इस दा विस्तार गुरमुख प्यारियां ने पाप पुन धर्म प्रचार अते सिमरन दे लेखां विच खोल के दर्शाया है। पर जदों असी सात संगत विच सिमरन करके मन नू निर्मल करके अपनी निर्मलता नू बरकरार रखदे आं, अगले समागम फिर निर्मल करदे, इस तरह जदों निर्मल करदे आं पूरा तौर ते निर्मल हो जाए मन, फिर साडी आत्मा दा अक्स साडे मन उते पैंदा है, फिर प्यौन चढ़दी है। हुंदा की है, साडे अंदर मैं मेरी दे प्यार दी बजाए तू तेरी दा प्यार उपज पैंदा है ते वधदा है। इस तरह उपजी प्रीत प्रेम रस चाव वाली रंगत नाल साडी होमे दा परम भुलावा दूर हो जांदा है, ते सानू प्रतीत होण लग पैंदा है कि कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर क्या जानो किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। इस तरह जद साडे मन नू इलाही प्यार दी प्यौन चढ़ जांदी है, किवें चढ़दी फिर दोहरा दईए कि मन नू निर्मल करना, संगत विच आ के सिमरन कर करके इस तरह निर्मल करदिआं करदिआं जदों पूरी तरह निर्मल होए, फिर अपने आप ही तू तेरी दी भावना उपज पैंदी है, मैं मेरी नू तू तेरी दी प्यौन चढ़ जांदी है। इस तरह जद साडे मन नू इलाही प्यार दी प्यौन चढ़ जांदी है, तां सानू प्रतीत होंदा है कि इलाही हुकम ही सारे पासे ओत पोत रव रिया भरपूर है, ते साडी निक्की जई होमे दी मनमर्जी लई कोई थाव नहीं। उस अटल अपुल अपार इलाही हुकम दी रवानगी दे वेग विच रुणना जां पहाड़े विच सुर होण हो के चलना ही इह साडा फर्ज है, ते साडे लई लाभदायक अते कल्याणकारी भी है। जग्यासु इस आत्मक अवस्था विच इउं प्रतीत करदा है, जो तू करें करावें स्वामी सा मसलत परवान, हम किछ नाही एक है ओही, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने, जे करावे सो करना, मैं नाही किछ आऊं नाही किछ आए न मोरा, मीत करे सोई हम माना, मीत के कर्तव कुशल समाना। सो जदों इन्हां दोहां मानसिक ते आत्मक अवस्थावां नूं इउं दर्शाया गया है।

महूरत देख के कर दे। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे जां कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखद, तारीख देखद, महीना देखद, साल देखद, महूरत देखद। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखण देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखण दिता, ना तरीक देखण दिती, ना कोई महीना देखण दिता। बस इना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया, परिवार नु मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले घर उड़ीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नू, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया, जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाव भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया, एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ।

एक दिन छड़ के तुर पे है। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नु मिली लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नु मिलन दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

फराज मिले। जोबन ग्रैसो बा रूपवंत जवानी, जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग। जोबन जवानी ग्रह कहते ने घर अपना घर, शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया। बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी, हाथी घोड़े समय दी सवारी, हर चीज एक दिन छड के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्हां दे पति मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना। उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने, तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतन, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने, ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नूं भुला देने हैं, पर मौत इंसान नूं कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नूं समझिया, अपने आप नूं फिर कहण लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा

सारा संसार सौंदा है पर मैं किवें सौवा। हाली ते आस सी तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है पर तू ता विचे साथ छड़ गया तू नहीं ता साहब जी कहंदे ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगदा है ते ओ मां जिदा पुत ना रवे ओदा जीवन कैसा। कहंदे ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर, अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया। दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है तू हिंदुस्तान दा बादशाह जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद कर दी सलाम कर दी तुसी क्यों रोंदे। अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले ता बहुत ने पर इको ही सी मेरी मां जेड़ी क्या कर दी सी वे अकबरा हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है ओ दुनिया दी

अपनी गलवकड़ी विच लै के दूर कर दिंदी। इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है। एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए कि मरण

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। यह भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोत यह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवा उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवा उन्हों छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है

राख पिता प्रभ मेरे मुहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हार्यो अनक बहु पाती छोटे कथू नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।